इंसाफ का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ूम। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहेदिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज बुधवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-265-6560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड या तो कंप्यूटर के जरिए ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। यहाँ से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

उसमें इसकी जरिए पीस की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। भजन यात्रा का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आज बुधवार का दिन है। आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी हरिओम शरण जी की आवाज में, हरिओम शरण जी की आवाज में ये सुंदर भजन।

वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए हरिओम शरण जी की आवाज में आपने सुना। चले अगला भजन जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना। मीका सुखू जी की आवाज में ये सुंदर भजन।

प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले मिलकर कुमार विशु की आवाज में एक सुंदर सा भजन को सुनते हैं।

पास में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुनने वालों, भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले आपकी बार ये सुंदर भजन की ओर।

सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और भजन यात्रा का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में आपके बाहर ये सुंदर

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम पे पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना विपिन सचदेवा की आवाज में।

सुंदर सा श्री गणेश चालीसा बस प्रोग्राम भी पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा, उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है, तो चले यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

पास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव शहर उत्तराखंड से बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी फरमाइश हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी काम काज आपको पेश करवाना है इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। टेलीफोन नंबर जो 24 पर दाग आप सभी के लिए बड़ा एक बार होता है 030-265-65-60। खास गाना बस पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने

SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश हुआ है। चलिए प्रोग्राम में अगली बार ये खास गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। ये गाना भी एक एल्बम में से निकाला हुआ गाना है।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। कुछ गाने एल्बम में से निकाल कर आप सभी के लिए आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। चले मधु की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए मधु की आवाज में प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में एक बॉलीवुड मेडली आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

0: प्यार ना
1: सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए भी हमारा प्रोग्राम सुनाई देता है।

रेडियो SBS के जरिए जुनिता गांधी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अल्ताफ सईद के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

पाते, होठ मगर कुछ कह नहीं पाते, अपनी बेबसी हम किस तरह कहें, कोई है जिसके बगैर हम

देवजीत की आवाज में आलबम से निकाल कर ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

सुनबालू रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनबालू की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आज बुधवार का दिन है, 15 जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनबालू को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। धूप का मौसम है, आज भी गर्मी सा मौसम होने वाले है। आप सभी सुनबालू को एक शुभ सुबह शुभ दिन और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। सभी सुनबालू जो रेडियो SBS का ऐप

ले चलेंगे पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर, जो आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो चले आप सभी सुन वालों को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी और चाय के साथ। तो चले प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज।

वास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। चले आपके बार मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं पुरानी नगमे रेडियो SBS की जरिए जो पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए है। मोहम्मद रफी के बाद चले किशोर कुमार की ओर।

किशोर कुमार, किशोर कुमार के आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। आसरों में थे ये खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत आपने सुना और बेहद पसंद किया है। किशोर कुमार के बाद लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आज की इस पुरानी नगमे के प्रोग्राम में।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-25-65-65-60। चले प्रोग्राम में मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। मुकेश और लता की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है कुछ ऐसे बंधन होते हैं।

की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में कुछ ऐसे बंधन होते हैं। सुनवालू रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे मुकेश और लता जी की आवाज में, जो पेश किया जा रहा है

मुकेश और लता जी के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना प्रोग्राम में होगा मुकेश लता और मोहम्मद रफी के आवाज में। मुकेश लता एंड मोहम्मद रफी के आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार एन लता जी की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चलिए एक गाना लता मंगेशकर की आवाज में जो पेश किया जा रहा है, काफी पुरानी फिल्म का गीत है जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

काफी पुरानी ये फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों घर की ओर देखा जाए इस वक्त 6 मिनट बाकी है प्रोग्राम में। सुबह 10 बजे में पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम

पुकारा उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन मोबाइल फोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए दुनिया की कोने कोने तक ये प्रोग्राम भी सुनाई देता है। द हार्ट ऑफ द मिलियंस माइटी मुकेश

आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में खूबसूरत पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले मुकेश के बाद किशोर कुमार द मैन विद फ्रीक्वेंट वॉइस किशोर कुमार के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है ये जो मोहब्बत है किशोर कुमार द नेम ऑफ द मूवी कटी पतंग 1970 का फिल्म 1987 का फिल्म है फिल्म कटी पतंग एक्टिंग सॉन्ग बाय लेट राजेश खन्ना।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई, ये जो मोहब्बत है, रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

एटी मुकेश की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। गाना मोहम्मद रफी और हेमलता की आवाज में पेश किया जा रहा है।

मोहम्मद रफी और हेमलता की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए दिल करने लगा है प्यार तुम्हें। खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में मन्ना डे प्रोग्राम में होगा और मन्ना डे की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना आपकी बार पेश होगा मोहम्मद रफी, मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में।

श्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये आज की ये प्रोग्राम में बस पेश की गई है। किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

कुमार की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो भी देखिए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए है। एक गाना फिर से आशा भोसले एंड किशोर कुमार की आवाज में पेश किया जा रहा है।

0: दिल मचल रहा है,
1: अभी समा नहीं है।
2: आशा भोसले और किशोर कुमार के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0322656560। लता मंगेशकर

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। लता के बाद हम आपको ले चलेंगे खास तौर पर मुकेश जी की ओर और मुकेश की आवाज में दमाइटी मुकेश की आवाज में ये गाना भी इस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम कन्हैया।

हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था कन्हैया। चले किशोर कुमार की आवाज में, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

घर। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की सरिये जो पेश की गई एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे। फिल्म का नाम होगा धूप। हरिहरन और श्रिया जी की आवाज में अब की बार गाना पेश किया जा रहा है। हरिहरन एंड श्रिया जी की आवाज में फिल्म का नाम धूप। उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

हरी हरन और शरिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। तुलसी कुमार और हिमेश हरी शबिया प्रोग्राम में होगा।

हिमेश रेशमिया एंड तुलसी कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। चले कुमार सानू और अलका की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11 और रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। अलका एंड सोनू निगम अब की बार प्रोग्राम में दिल मांगे मोर, फिल्म का नाम दिल मांगे मोर।

0: चले कुमार सानू एन कविता कृष्णमूर्ति की ओर।
1: देखा है तुझे चैन नहीं आता है, इस जमाने में मुझे कुछ और नहीं भाता है, दिल मेरा चाहत का तलब।

ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा। उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गए आतिफ असलम और सुमेधा प्रोग्राम में।

खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना लाइव की जरिए प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अलका जेके आवाज में आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

सोनू निगम और खासतौर पर श्रिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा, उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चले अब की बार आपकी सेवा में ये गाना पेश किया जा रहा है, अक्रूस फिल्म का नाम।

अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों चलिए आज की इस प्रोग्राम में गाना हेडो फिल्म आंखों में तुम हो कुमार सानू और अलका जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं के की आवाज में। आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

तानु और अलका जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा, उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना पेश होगा सोनू निगम और अलका जी की आवाज में, फिल्म का नाम हसीना मान जाएगी।

रेडियो SBS के जरिए फिल्म हसीना मान जाएगी, उसी फिल्म का ये गाना पेश की गई सोनू निगम एंड अलका जी की आवाज में। गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार कुमार सानू और खास तौर पर साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

हेट स्टोरी नंबर दो उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में आपकी बार एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है सुनिधि चौहान की आवाज में।

हल्का याग्निक और बाबू सुब्रियो की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। कुमार सानू जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है, कुमार सानू और अलका जी की आवाज में। और फिल्म का नाम

में इसके जरिए ये जानबाज प्रोग्राम में पेश की गई है। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आज क्यों हमसे पर्दा है रेडियो में इसके जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले द हार्ट ऑफ द बिलियंस द माइटी मुकेश की ओर

द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए एक और खूबसूरत गाना मुकीस जी की आवाज में आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये खास गाना बस पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है कि स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11 और हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। इसी तार की नंबर पर अपना सभी और सभी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है। ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में चले मिलकर ये गाना को सुनते हैं।

किशोर कुमार एन लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। उसी सुनने वालों है जो पुरानी नख्मे इस वक्त सुनते हैं जो रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है। चले गाना और किशोर कुमार की आवाज में पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार के आवाज में ये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। चलिए हम आपकी बार ले चलते हैं फिल्म बारह धड़ी की ओर। उसी फिल्म का एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम है बारह धड़ी। फिल्म का नाम, खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। तो चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और लता।

मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर। अब की बार जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

रेडियो वेव्स भी इसकी जरिए ये खास पुरानी फिल्म का गीत आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई है रेडियो एसबीएस की जरिए। अभी आपने सुना, चले अब की बार ये गाना की ओर। ये गाना भी रेडियो एसबीएस की जरिए ये खास पुरानी फिल्म का गीत आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई है रेडियो एसबीएस की जरिए। अभी आपने सुना, चले अब की बार ये गाना की ओर। ये गाना भी काफी पुरानी है जो

रेडियो स्टेशन के ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मन्ना डे और लता जी के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। काफी पुरानी फिल्म का गीत अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा पे बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है

महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था ऊंचे लोक। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार की ओर आपको

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशली क्रमलाल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren? Kan het altijd. Surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 030-262-6611. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag en dat is...

खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, इस खजों दूर जुबेन नौटियाल दे दी दिस सो मोय ना ना जुबेन हाउ फेर्दर मैथ शफाकत अमानत अली एंड कैरलिजा ये रात ताल अद फिल्म कभी अलविदा ना कहना कोम तत लीचे मितवा।

ये बेखुदी दीवानगी आउट द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे एन खसाओ दूर जुबे नौटियाल कॉम्प्ट होने लगा आउट द फिल्म एंथम।

गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाइयाँ। आओ ना क्वम अद फिल्म क्यों हो गया ना, एन अतिश का अख्तेर दूर विवेक ओबरॉय एन ऐश्वर्या राय दीते वारस आर देते। Uit de film Want It komt het volgend liedje via Radio SBS, gezongen door Wajid en Amrita Kuk. Just love me, love me, love me.

अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, ये चाहे फिल्म अभी मारे हजा हों लता मंगेशकर, हाँ उदा फैदर मैथ फिल्म बॉम्बे, कहना ही क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले।

आ कहीं दूर चले जाएं हम, वॉज आउट द फिल्म लावारिस। एंड आउट द फिल्म भारत इज़ द वोंट लीजिए इन द प्रोग्राम गीतों के लहर, गज़ों दूर अभिजीत श्रीवास्तव, इश्के दी चाचनी।

होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, इसका सॉन्ग दो जगजीत सिंह एंड कवाम आई द फिल्म प्रेम गीत, एंड गजोंग दो किशोर कुमार एंड आनंद कुमार कॉम्प्ट प्यार लो प्यार लो।

दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। राम राम, नमस्कार और सलाम वालेकुम सुनने वालों। आप सुन रहे हैं रेडियो SBS और मैं हूं आपका सेविका अनीता। हमारा साथ होगा 9 बजे तक। आप जरूर प्रोग्राम सुनते हैं।

6:04 गुजर गए हैं सुनने वालों, और ये है स्टूडियो टाइट। En van harte goedenavond, lieve luisteraars. U luistert naar Radio SBS.

आपको कुछ माफ करना, आपको कोई गीत मांगना है या किस कुछ कहना है तो आप जरूर तार कीजिए। तार का नंबर है 03-226-6611, ये है स्टूडियो का नंबर।

हाँ सुना लो, हम आपको ले चलते हैं पहला गीत की तरफ। फिल्म का नाम है खेल खेल में और आपको सुनाएगी शैलेंद्र सिंह।

तुमको दिखा ऐसे शैलेंद्र सिंह के वास में और हाँ सुनालो फिल्म का नाम है

0: आपको ले चलते हैं फिल्म घरुंडा की तरफ और आपको सुनाएगी रूना लैला और भूपिंदर सिंह।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

0: येसुदास के वास में और फिल्म का नाम है सफेद जूत। हीरा और पत्थर और आपको सुनाएगी किशोरदा।
1: ये कहानी नहीं है रानी, अरे प्यार है प्यार। क्या प्यार कागज पे लिखी कहानी नहीं, जो लिखे

यार कागज पे लिखी कहानी नहीं। किशोर डा के वास में फिल्म का नाम है हीरा और पत्थर। रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले और सादे राय हेमंत कुमार।

पागल पागल हाय ये मौसम हेमंत कुमार और रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले। फिल्म का नाम है हाइवान। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर के आवाज़ में।

द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर के आवाज में। फिल्म खून पसीना से निकाला था ये गीत। हम बढ़ते हैं, आप सुनिए, फिल्म का नाम है स्वामी। रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले।

नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर, द मैन विद द डायमंड वॉइस महेंद्र कपूर के आवाज में, फिल्म बदलते रिश्ते

नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर, रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले और महेंद्र कपूर के वास में। फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

तेरे नाम तेरे नाम, महेंद्र कपूर के वास में फिल्म पति पत्नी और वो। फिल्म का नाम है विश्वनाथ। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर की आवाज में

एंगल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर की आवाज में। हाँ, सुनने वाला हूँ, आपने सुना, फिल्म का नाम है दो शिकारी। फिल्म हीरा मोती 1979 का फिल्म है सुनने वालों, 1979। मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी और साथ दे रही है दिलरज कौर।

से दिल मिला हो, किशोदा रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले, फिल्म नया बकरा। फिल्म ये कैसा नशा है,

किशोर डा रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले फिल्म प्यारा दुश्मन हाँ सुनो ले इस गीत के बाद आप सुनेंगे एक कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे एक घंटा आप सुनेंगे लोकल।

आज तुम मुझसे एक बार कहो, उमर वागिद हुसैन की आवाज में एल्बम का बोले 14 सुपर शोज फॉल्यूम 3।

किस मौसम में नदीम खान के आवाज में ये एल्बम का बोले 15 सुपर सोल्स फॉलिमा फियर किरण केदार के आवाज में

हाँ, सुनने वाला संजय जोधा के आवाज में। इस गीत के बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप जरूर सुनते रहना। आप सुन रहे हैं रेडियो SBS और मैं हूँ आपका सेविका नीता।

कोई कोई रात ऐसी होती है, उमर वागिद हुसैन के वास में। एल्बम का बोले 15 सुपर सोल्स वॉल्यूम फियर आपको सुनाएगी नदीम खान।

क्या करें जब किसी से प्यार हो जाए। नदीम खान के आवाज में आपने सुना, एल्बम का बोल है 15 सुपर सोल्स वॉल्यूम 5।

आवाज में एल्बम का बोल है अमोर नौ बजने में सुनने वालों, नौ बजने में चार मिनट बाकी है, उसका मतलब है ये आखिरी गीत है। हाँ सुन रहा, आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम जरूर ही पसंद आया होगा।

शुक्रिया। और हाँ सुनने वालों, आप गौर कीजिए, कल एक स्पेशल दिन है। आपको मालूम है क्यों कल का दिन स्पेशल है? क्योंकि किसी का बर्थडे है कल। एक शख्स है जो हर सुबह भजन प्रोग्राम पेश करते हैं, उसी का जन्मदिन है कल। कहना नहीं कि मैंने कुछ बोला है। हाँ सुनो लो, हमारा मुलाकात होगा एतवार को सोमवार को 12 बजे हम हाजिर रहेंगे आपका सेवा करने के लिए। 1 बजे शाम में एक इंटरव्यू रहेगा, आप जरूर ही प्रोग्राम सुनते रहना। मन के आंगन में प्यार बरसाओ। आप सुन रहे रेडियो SBS, मैं हूँ आपका सेविका नीता। और हाँ, मुस्कुराते रहना और भूलना मत, कल किसी का जन्मदिन है।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं लेकिन करीब।